0: जहां हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: जी मैं ताहिर नैयर, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।
1: तुल्लाह वा बरकातहु। संगीत दोस्तों, बहनों, भ्रारो, सजनों, बिरो ते मित्रों, मैं अजीब खान प्रोग्राम अपना ग्रह कीर्तन सुनी खिदमत च हाजिर होया। थोड़ा जहा ले जनाब नंबरदार राजा सफैल अहमद खान साहब नाल बंदो साडा प्रोग्राम भी शामिल मोहम्मद मकसूद आप रठवा मीरपुर कश्मीर जनाब मौजूद है। तो इन्होंने बुझने पाले पियो गीत करने जनाबरदार फैजाद सफेद ना खान खान साहब उस तो बाद जनाब नंबरदार सारी नंबरदार गुलराज साहब ते उस तो बाद राजा मतरूब खान साहब तो बाकी जितनी भी थोड़ी टीम ही उन्हें सारे ने ना बिस्मिल्ला बाकी टीम सारी जनाब बिस्मिल्ला।

96.7 is thinking positive. तुसें आस्तै पेश करने आं जनाब अपनी मिठी मिठी मार्च 7 FM. अगर तुसें साढ़े स्टूडियो चाहे स्टूडियो बिच नंबर 4261-8181 ते जे तुस शर्मिले जो ना चाहने कि थोड़ी आवाज़ साढ़े तक पुजे ते व्हाट्सएप पर सुख सुनेहा लिखी दा जनाब भेजी छोड़े मास्टर मोस्टर होने तरह 0793984939. साढ़े प्यारे भाई जनाब चेयरमैन मोहम्मद महमूद खान साहब प्रोग्राम शंबले इन्होंने तलक गगनाड़ा कोटली आजाद कश्मीर आल मकीम शफील हमेशा साढ़ा साथ देने जनाब ते आखने जी कि नाइस प्रोग्राम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब. ते हुण ए अगले माइये ते टप्पे चेयरमैन जी स्पैशली तुसां आस्तै ते बाकी जितने भैणां भ्रा साढ़े आस्तै मौजूद है उन्होंने सारे आस्तै बिस्मिल्लाह जी चेयरमैन जी.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510042. केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org

0: तमाम ही कलाम बड़े खूबसूरत होते हैं और आज की ये महफिल, और ये महफिल हर रोज होती है हमारी, और हमारा और आपका साथ दो घंटे होता है। दो घंटे में आपके लिए मुख्तलिफ कलाम आपके लिए पेश करते हैं, और अभी भी पहला कलाम अभी आपने सुना और आपको एक और कलाम खूबसूरत सुनाते हैं।
1: Listen live online at linkfm.org. Link FM.

0: सोनी एक चेयर यार मेरा खुद का अपना है सुना
1: चल सुना
0: तो सुन आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है वो
1: अबे गोली क्यों गोली दे रहा है यार ये तो किसी पिक्चर का गाना है मेरे दोस्त तू ओरिजिनल सुना मेरा ओरिजिनल
0: सुना
1: मैं कशी पे इस कदर
2: वेलकम बैक तमाम सुनने वालों को एक बार फिर क्वाली स्पेशल में फैसल याकूब सुल्तानी का सलाम कबूल हो। ब्रेक के बाद अब आपको मजीद क्वाली सुनाएंगे कलाम सुनाएंगे, तो चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

कवालियाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बड़ा ही बड़े इनमें एक मैसेज होता है। तो आज भी अभी ने आपने ये कवाली सुनी और इसके बाद आपके लिए एक और कवाली पेश करते हैं, ये सुनिए। और हमेशा की तरह ये भी शायद इतनी ही लंबी होगी कवाली, और ये हो सकता है कि हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ ले जाए। अगर ना भी हुआ तो हमारी मुलाकात अब ब्रेक के बाद ही होगी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
15: Where you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें, महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

बहुत ही प्यारा सी ये गीत, जिस तरह इन्होंने कहा कि बेशक बाप कल्ला ही है या माँ है कल्ली है, वो दुनिया जिन्ना उसका आसरा हुंदा है, सारी दुनिया का तुहानू आसरा नहीं मिल सकता जिन्ना एक माँ कोलों जां बाप कोलों मिलता है। उन्हां दी जिहड़ी सलाह हुंदी है बिल्कुल सच्ची ते सुची हुंदी है, उन्हां नू यही हुंदा है, उन्होंने तुहाडा फायदा उस विच देखना हुंदा है कि इहो जिही सलाह देण जिस नाल तुहाडा कोई नुकसान ना होवे। उम्मीद करती हाँ तुहानू सारयां नू गीत पसंद आया होवेगा, मैनू वैसे यह गीत बहुत सोहना लग्या। तो अमीन मालिक जी, तुसीं मेरे वीर टैलीफोन किया याद किया, प्रोग्राम पसंद कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस गीत की तुसीं फरमाइश की वह मैं गीत लभ के जरूर लगावांगी। हाले तो मैं वो जदों टिक्का पाउंदी हाँ ना सर्च विच, तो वह डिशिज़ आई जांदियां ने, टिक्का चिकन, टिक्का मसाला, टिक्का सारा कुछ, तो चलो मैं गीत भी वह लभ के तुहाडे वास्ते जरूर लगावांगी। अगला गीत है, इस गीत की फरमाइश की सुरिंदर कौर जी ने, तो बड़ा सोहना गीत है यह, तो यह भी बड़ा सच्चे तो सुचे बोल ने, तो चलो सुनते हाँ कि की कहें ये।

बहुत ही प्यारा सी ये गीत, दुख भरिया उदासी भरिया। वैसे वो भी समय होंदे सी ना जदों चिट्ठियां लिखते होंदे सी, कितना चंगा होंदा सी ना चिट्ठी आनी, किन्नी किन्नी वारी उन्हूं पढ़ना, जदों दिल करना दिल उदास होना तो चिट्ठी नूं पढ़ लेना। हुण तां कई बार गल कर लो बाद विच चेता भी रहिंदा नहीं कि की गल होई सी। पर अजकल चिट्ठियां लिखण दा जमाना ही देख लो, फैशन फैशन ही कहांगी फैशन घट गया है। मोबाइल ते जिहड़े हुंदे वट्सएप ते मैसेजिस लिख दित्ते जां एसएमएस कर दित्ते, ईमेल लिख दित्ती, पता जे इह छेती छेती दा काली दा फास्ट जमाना है ना, हर एक चीज़ फास्ट होनी चाहीदी है। हरभजन मान जी दी सोहनी आवाज़ सी ते बहुत ही प्यारा सी इह गीत, प्यारे सन गीत दे बोल। अगला गीत कमल जीत जी, तुहाडे नाम तुसी कहिंदे हो कि अपनी पसंद दा गीत कोई लगा देवां, पता नहीं है देखियो तुहानूं पसंद आउंदा कि नहीं आउंदा। मिसी जिमी तुसी भी मैसेज भेजिया है ते कहिंदे बिजी बहुत रहे इस करके प्रोग्राम बहुत मिस कीता, ते चलो कोई नहीं, लाइफ विच इंसान बिजी भी हो जांदा है, जिन्नी इन्ना जरूर है कि ठीक ठाक सारे तंदुरुस्त होवो, ठीक ठाक होवो, ते मैनूं फिक्र जिहा

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: Let's hear it once more, please.
1: ये उन सब के लिए ना जिन्होंने कुछ खोया हुआ है।

0: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल,
1: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक FM, दिल से आपके साथ।
2: लिंक FM Sheffield,
3: Sheffield's लिंक FM,
4: linking communities. This is Link FM, 96.7 FM.

0: know your Monte clothes can make a big difference in someone's life. Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-29...
1: To your table at your home.
2: पेरी चिकन बर्गर्स और करी डिशेस ऐसी कि आपको अपने वतन की याद दिलाएं।
1: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: जिसके खानों के लिए सब हैं बेताब, वो है नायाब, वो है नायाब.
3: Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: ये होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम्हें किमाया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330057199 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
10: तू सब

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जो हम पहुंच चुके हैं, और इससे पहले जो दो हिस्से थे उसमें हमने एक नुक्ते पर बात की है। तो सबसे पहले तो यह है, अगर किसी की दिलजारी हुई है और बात इधर उधर हो गई तो मैं दिली तौर पर जो है माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, और आपका बड़ा शुक्रिया का माफ़ी कर देते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी बात को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, ताकि फिर हमें जो है जो मौजूदा हमारे मसाइल हैं, जो बातें हैं, जो हमें आज हर वक्त जो है

मिलती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उन पर इंशाल्लाह आइंदा बात होगी। ये तो हमने आज एक बिल्कुल एक स्टार्ट उसका लिया है, एक उसकी शुरुआत जो है की है कि आज जो है हमें आज एज ए मुसलमान हमें किन चीज़ों की कमी है। देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अखलाक़ी असना की अजीम तरीन मरतबे पर फायज़ हैं। आज अगर हम उनकी उम्मती कहलाते हैं और है भी इंशाल्लाह उम्मती, तो फिर आज हम कहाँ पर खड़े हैं। आज जो है हमने ये फैसला करना है कि आप दिन पूरा दिन भर किसी को तकलीफ़ नहीं देते, परेशान नहीं करते, वो हमसे खुश तो नहीं है लेकिन हम परेशान नहीं है, या हम जो है हर वक्त इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि जो है वो किसी की बेहतरी की जाए, हम पूरा ज़िंदगी इस तरीके से गुजार रहे हैं, या हम इस तरीके से पहुंच चुके हैं कि अब आदमी को तकलीफ़ देना है, हर आदमी को परेशान करना है, हर आदमी को जो है वो अपने ज़ेरे नगी करना है, हर आदमी को जो है वो दुख देना है, हर आदमी को रुलाना है, क्या हम इस बात में जो है वो जा रहे हैं, तो कहाँ हैं हम। और वो जो है सारे के सारे बहर अल्लाह पाक हमें अदायत नसीब फरमाए और गलती गुस्ताखी माज़ जी। आज अल्लामा साहब की नज़म खिज़र राह बड़ी खूबसूरत नज़म है जी, और बड़ी मुश्किल नज़म है। ये देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायरी के अंदर जो है कुछ टापक मजमून ऐसे हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल या आसान जो है ये बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ें, यानी मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, कभी कभार इतनी मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप वो आपकी नज़र आपका दिल और दिमाग के साथ जो है उसको अगर आप खोलेंगे और सही तरीके से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बैर है, ये बाहर से तो बहुत नज़र आता है, जब इसके अंदर आप चलना शुरू करें गहराई शुरू हो जाती है, फिर आप इसके अंदर जब गोताजन हो जाते हैं फिर ये बैर अमीक है और बैर बेकरा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आदमी पीछे नहीं हटता, फिर इसके आगे से आगे जाने की कोशिश करता है लिहाजा। और दूसरी बात यह है कि यह भी एक रूहानी तलक है, जब तलक इकबाल से हो जाए, उसके साथ अदब और प्यार का रिश्ता कायम हो जाए, तो फिर वहाँ से वो जो खुद है वो तशरीह वगैरह जो समझाने वाली बात वो वहाँ से शुरू हो जाती है। आज हमने कनेक्शन तोड़ दिए हैं, कनेक्शन जो है ये रूहानी कनेक्शन जब तक हमारे दोबारा ये कायम नहीं होंगे, यकीन करें हमें कुछ हासिल नहीं होगा। देखें ये फ़ोन है ये मेरे पास है, ये अभी ये सारे का सारा ये काम कर रहा है, अगर इसका कोई कनेक्शन ये ख़त्म हो जाए, जिसका सर्विस वगैरह नहीं होती, वो कोई सिग्नल वगैरह नहीं होते मुल्क के अंदर भी, तो क्या हम बात कर सकते? नहीं कर सकते, बात करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन यह बात नहीं हो सकती क्योंकि कनेक्शन नहीं है। आज जो है हमारे कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, तो हम जो है हमें कनेक्शन अपने दोबारा बहाल करने हैं, ये सिग्नल जब दोबारा बहाल होंगे तो फिर रबता होगा, फिर सारी चीज़ें होंगी, दोबारा जो है इसका तरीका। अच्छा एक और बात आखिरी है इसमें, यह है कि अगर कनेक्शन बहाल करने का तरीकाकार क्या है, एक वक्त उसका सबसे अहम तरीका है कि जो तालीमात उनकी हैं अल्लामा साहब की, देखें ये तालीमात हैं। अब जो है हमने क्या करना है कि अल्लामा साहब की जो तालीमात हैं उनके मुताबिक हमने चलना है, उनकी बात को हमने समझना है, उनकी बात पर जो है हमने अमल करने की कोशिश करना है। और जो है वो असल में बात ये है कि जो अल्लामा साहब की शायरी है, अल्लामा साहब की किताबें हैं, जब आप उनके साथ उसका मुतालिया करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, एक शेर सिर्फ और सिर्फ, यकीन करें हमारे पास कितनी कितनी किताबें पड़ी हुई हैं जी, इस फ़ोन के अंदर कितनी कितनी किताबें हैं जी, ये लाइब्रेरी है। इसके बाद जो है देखें आपके घर के सबसे आला किताब तो अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम कुरान मौजूद है। और कई बार बार चुका हूँ कि यार नमाज भी हम पढ़ते हैं, दो आयतें पढ़ लें, कोई लाजमी बात पूरा सपारा पूरा कुरान पाक मुकम्मल बिल्कुल ना करें, वो बाद में हो जाएगा, कम अज़ कम एक रुकू को भी छोड़ें यार, एक आयत दो आयतें 3 मिनट लगते हैं, आयत पढ़ने के बाद उसका तर्जमा पढ़ लें, उसके साथ कनेक्शन तो कायम करें जी, समझना तो तकें रास्ते पर चलते आस्ते आस्ते कुछ चीज़ें, पहले दिन बच्चा दाखिल होता है थोड़ा वो सीखता है, आस्ते आस्ते सब कुछ उसको आ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है खिज़र राह नज़म ने शुरू की हुई थी, तो अल्लामा साहब ने हम पहले जो दो शेर थे हमने पढ़े थे कि साहिल दरिया पे मैं एक रात था मैं वे नज़र, गोशा दिल में छुपाए एक जहाने इज़्तराब, शबे सकूते अफजा शब सकूते अफजा आसूदा अवा आसूदा दरिया नरम सैर थी नज़र हैरान कि ये दरिया है या तस्वीर आब। और ये दो पढ़े थे हमने, आगे शुरू करते हैं, तो हम समझाते हैं कि जैस

Ji. Soon we will be taking a short commercial break. तो जाना कहीं नहीं आपने, साथ देते रहिएगा शाम के 6 बजे तक.

0: millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114 2966092। पार्ल बेकर्स।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond.
4: Sheffield's very own community radio station.
5: Link FM.
6: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
7: लिंक एफएम शेफील्ड।
8: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 FM।
9: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
10: This is Link FM.

Do you welcome commercial break? If you just tune in or this is the first time you tune in, very warm welcome. Assalamu alaikum. This is Drive Time Show and I'm your host Jawad Janjua. Time is 17:01. पांच बज के एक मिनट हुआ चाहता है एंड आई होप यू आर स्टिल विद मी एंड एंजॉयिंग द ड्राइव टाइम शो. वी आर लाइव अक्रॉस साउथ यॉर्कशायर ऑन 96.7 एफएम फ्रीक्वेंसी. वी आर लाइव ऑन डीएबी. Or if you just type Link FM live on Google, you can listen to Link FM. You can download our app also. Tune in. You can download our app, Link FM 96.7. Or you can search Link FM on a TuneIn app also. So there are so many ways you can join. So stay tuned. Enjoy the drive. Enjoy the Drive Time Show.

0: रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
1: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Saim Mudassir.
10: This is Rahan.
11: My name is Rizwan Ishfaq.
12: My name is Asham.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.

हमारा और आपका साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगता होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बहुत अच्छा, बहुत नाइस ट्रैक्स आपके लिए लगाएंगे, उम्मीद करेंगे आप पसंद करेंगे। साथ देते रहिएगा, हम हैं आपके साथ और आप हमारे साथ।

तुसा जितने भी संगी बेली ते दोस्त इसलै प्रोग्राम सुनी रहे हो कश्मीर ते पठवार ने रंग, मैं तुसा सारे की अपने शोने विच वेलकम सत बिस्मिल्ला जी अनवाखना। ये प्रोग्राम ब्रेड फाउंडेशन रेडियो पर भी सुनिया जाई रहा। जितने भी ब्रेड फाउंडेशन रेडियो ने लिसनर है उन सब की एक बारी फिर मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि तुसा सारे ठीक ठाक असो, खैरी मेरी असो, चाहे तुसा गड्डी सुनने हो, कार सुनने हो, बार सुनने हो, गैरेजा ही सुनने हो या टेक वे रेस्टोरेंट ही सुनने हो, तुसा सारे की वेलकम टू द शो। अगर तुसा भी कोई प्यारा जा गीत सुनना चाहने हो अपनी पसंद ना, तो जरूर जनाब तुसा सगी रिंग करी सकने हो 01142618181। अगर तुसा माड़े रे शर्मीले जे हो तो फिर तुसा असा की व्हाट्सएप ने पर 07939849339 पर मैसेज करी सकने हो। असा फेसबुक ने ऊपर भी लाइव है और नाल ही नाल जनाब ठीक ठाक ने ऊपर भी। मास्टर मोहम्मद रजाक साहब वेलकम टू द शो। एक खाली यूजर है आने जी, सलाम अंकल, वालेकम सलाम। मोहम्मद सलीम साहब साढ़े बड़े प्यारे संगी बेली ते दोस्त जनाब लुटन थो साढ़े नाल मौजूद है, असा उन्हें की भी वेलकम टू द शो आखने। राबिया भट्ट साहिबा उन्हें की वेलकम आने आने जी फ्रॉम बोल्टन, थैंक यू सो मच। सत बिस्मिल्ला जी है यानो बोल्टन वाले हो, क्या हाल है, ठीक हो, हैरी मेरी हो। और नाल ही नाल असा जनाब तुसा की बड़े प्यारे प्यारे गीत सुनासा। जफर इकबाल साहब वेलकम, अमजद साहब वेलकम। अगर तुसा अपनी पसंद ना गीत सुनने चाहने हो, अपने दोस्तों ने यारा बेलिये ने ना करना चाहने हो तो जरूर राबता करी सकने हो 01142618181। और व्हाट्सएप ना नंबर 07939849339। इरफान राजा साहब वेलकम, सोहेल अय्याज साहब वेलकम। हुण असां जुल्ले अपने पहले गीत नी जानब और इसे उम्मीद ने नाल के तुसा पसंद फरमासो। ये अपनी मां बोली ने विच प्रोग्राम आ मीरपुरी पहाड़ी पठवारी जी। लो जी सुनो, क्या याद रख सो

और रिफान राजा साहब, मिर्जा बिलाल साहब और चंद जमान मुगल साहब, राजक शाह साहब, चौधरी जुल्फकार साहब और भी जितने संगी बेली ते दोस्त इसलिए सुनी रहे उन्हें सारे ने ना कर सा छला। मोहम्मद अफजल साहब तुसने नाम जी गरदास मान्य आवाज छला सुनो तब मजे करो मजे।

चला नो ना थे वे ऐसी छला जनाब जड़ा मैं तुसां से लाया। अगर तुसां भी कोई गीत सुनना चाहने हो तो जरूर राबता करो। ये कश्मीर दा पटवार ने रंग तुसां सारे ने संग तुसां ना मेजबान आबद हसैन लाइव स्टूडियो च शो पेश करी रहा। ये प्रोग्राम ब्रेडफोर्ड एशिया रेडियो 1430 ने पर सुनिया जाई रहा। तुसां सारे संगियां दोस्तां दा बेलियां की एक बारी फिर वेरी वेरी वार्म वेलकम जी। हुन देर शेर ना करने में आना तुसां की ज्यादा ती ज्यादा गीत सुनाए जान जुल्लियां एक और गीत नहीं जानब क्या याद रख सो गीत सुनना चाहने हो ना जी। आला आला मी पता ना सुनना चाहने हो लो जी सुनो।

मैं तुझे पसंद, तू मुझे पसंद, मैं को तू पसंद है, ते को मैं पसंद हूँ। कितना प्यारा संग है। ये तुसा नी खिदमत च लाया सा असन आल जनाब उस्मान साहब है, वो आखने जी के राजा मुंशी साहब ने फरमाइश पूरी कर सो, जरूर जरूर जनाब क्यों नहीं। हुण ब्रेक अशनी, ब्रेक तो बाद जरूर पूरी कर सा। और मियां अब्दुल रहमान साहब वेलकम टू द शो। एक भाईर पुछने टिक टाक ने उपर के तुसा दिहाड़ी टैक्सी करनी हो। बिल्कुल जी, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, कोई शक शुबा नहीं। और एक और यूजर है जनाब आने, माशाल्लाह जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मलक खालिद साहब तुसने भी फरमाइश पूरी की जासी जनाब, क्या याद रख सो। राजा औरंगजेब साहब जनाब इटली तो साढ़े नाल मौजूद है, असा उन्हें कि अपने शो कश्मीर ते पठवार ने रंग च वेलकम आखने। ये बड़े बड़े प्यारे संगी है जनाब। इंग्लैंड असा बड़ा अरसा गठिया इक्के फैक्ट्री च काम किया। औरंगजेब साहब वेलकम, सत बिस्मिल्ला जी हैं। चूंकि हूँ गीत शीत ना लाने का इस मारियाँ के ब्रेक ना टाइम बड़ा नज़दीक आ, ब्रेक ने उपर जुलसा मुड़ी वापस ऐसा था फिर सौंकी सोने सोने प्यारे प्यारे मिठड़े मिठड़े गीत सनासा। तुसा सुने रहे हो लिंक एफएम 96.7, तुसा ना मेजबान आबद हुसैन, तुसा से लाइव प्रोग्राम स्टूडियो चो पेश करी रहा अपनी मां बोली पठवाड़ी पहाड़ी ते मीरपुरी ने विच। इसे उम्मीद ने नाल के तुसा पसंद फरमासो। मेरे अबीबी वेलकम टू द शो, माड़ा ता तुसा ना साथ रहे सी 8 बजे तोड़ी। इसे उम्मीद ने नाल के तुसा मेरा साथ सोने तरीके नाल निभासो। जी जी, हुण जुल्लिया थोड़ी जी देर ब्रेक पर, तुसा भी कुछ चाह पानी पी के नो। ब्रेक तो बाद वापस ऐसा था फिर तुसा की सोने सोने

0: This is Ahmad Hussein and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
10: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ
11: लिंक FM Sheffield.
10: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ
11: लिंक FM.

0: रहे बेटा?
1: मामा,
0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा को लाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उसे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796

0: की मंजिल।
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड,
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
3: और हर सूर दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम,
1: दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

आंखों में गुंचा हाय निवाजिश निचोड़ कर, आंखों में गुंचा हाय निवाजिश निचोड़ कर, मेरे दिले शिकस्ता को नरमी से जोड़ कर, होंठों पे नीम मौजे तबस्सुम को तोड़ कर, मेरी तरफ खफीफ सा गर्दन को मोड़ कर, कल सुबह रास्ते में सुहानी हया के साथ उसने मुझे सलाम किया कि सदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ कई नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ कई नशियात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी एन डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं। और हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और यही नशात इस वक्त CVFM मिड्सब्रा से 104.5 FM पे भी पेश की जा रही है। और सामीन अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन हाजिर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी इस वक्त हमारी ये नशात सुन रहे होंगे, हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे, आप सभी अल्लाह के फजलो करम से बखैर वाफियत होंगे। और खुदा न खास्ता अगर आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और सभी ने अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, जाहिर है हम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नवंबर दिसंबर की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, और यही मौसम होता है। अभी तो ज्यादा इतना मौसम सर्द नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजीद सर्द हो जाएगा, और फिर जब पड़ेंगी बर्फें लग पता जाएगा। और जी हाँ, आप अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि डबल टैप कीजिए, लाइव शेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, ताकि हमारी ये नशात, हमारा ये रेडियो स्टेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंच सके, उनके पास भी जो जिन्होंने अभी तक हमें नहीं सुना, और ये आवाज घर घर पहुंचाइए। आरिफ साहब बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, रासिब मोहम्मद साहब वेलकम, खुश आमदेद। और रिज आपका शुक्रिया, और जितने भी साथी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेहद शुक्रिया आप सभी का। आइए यूं करते हैं कि अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आगाज करने से पहले आपको स्टूडियो का फोन नंबर बता दें। रेडियो का फोन नंबर है 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का फोन नंबर है 306677। आइएगा, कोई भी गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो तो हमें बताइएगा। और हाँ, आपके लिए हमारा व्हाट्सएप भी हाजिर है 00447-800-599-563, दैट्स 00447-800-599-563। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत से, आवाज है राहत फतेह अली खान की।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, बोलना हल्के हल्के, आवाज थी उस्ताद राहत फतेह अली खां की, खूबसूरत गीत था। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वालों ने इस गीत को पसंद किया होगा। कोई गीत सुनना चाहें अगर आपकी कोई पसंद हो तो हमें बताइएगा।

डॉक्टर शफकत तशा जी आपने ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया आपका। और ना सिर्फ आप हमें खुद ज्वाइन कीजिए बल्कि हमारा लाइव लिंक शेयर कीजिए, डबल टैप कीजिए और हम तक पहुंचाइए। हमारे इस प्रोग्राम के जो अगला हिस्सा होगा उसमें आप सुनने वालों की टिक टाक से ही हम लाइव कॉल्स रेडियो पे भी पेश करेंगे। तो आप यूं करते हैं कि आप सुनने वालों के लिए एक और खूबसूरत गीत पेश करते हैं और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम। राना उस्मान अली, बेहद शुक्रिया आपका। सबा, बेहद शुक्रिया आपका। जितने भी साथी आ रहे हैं, खुश आमदेद।

0: जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
1: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229627.
0: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल के इस हिस्से में खुश आमदेद, और जितने भी इस वक्त टिकटॉक के जरिए हमारे सुनने वाले आ रहे हैं आपको भी खुश आमदेद, और जो स्टूडियो में कॉल्स कर रहे हैं आपका भी बेहद शुक्रिया, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं हम। और तरन, आपने एक फरमाइश भेजी थी, मोहम्मद रफी की आवाज आप सुनना चाह रही हैं, तो आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक खूबसूरत गीत हम पेश करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, फिल्म का नाम है अदालत। जी चाह रहा है कि इससे पहले वसी चाह की एक खूबसूरत नज्म है दूरी के हवाले से, लास्ट कॉल, वो आप सुनने वालों के नाम करते हैं कि कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, मैं बहुत मसरूफ हूँ मुझको बहुत से काम हैं। कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फोन पर, मैं बहुत मसरूफ हूँ मुझको बहुत से काम हैं, इसलिए तुम आओ मिलने मैं तो आ सकती नहीं। हर रिवायत तोड़कर इस बार मैंने कह दिया, हर रिवायत तोड़कर इस बार मैंने कह दिया, तुम जो हो मसरूफ तो मैं भी बहुत मसरूफ हूँ, तुम जो हो मशहूर तो मैं भी बहुत मारूफ हूँ, तुम अगर गमगीन हो मैं भी बहुत रंजूर हूँ, तुम थकन से चूर तो मैं भी थकन से चूर हूँ। और जाने मन है वक्त मेरा भी निहायत कीमती, जाने मन है वक्त मेरा भी निहायत कीमती, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी। जाने मन है वक्त मेरा भी निहायत कीमती, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी, मैं भी अब फारग नहीं मुझको भी लाखों काम हैं, वरना कहने को तो सब लम्हे तुम्हारे नाम हैं। मेरी आंखें भी बहुत बोझल हैं, सोना है मुझे, रात जगों के बाद अब नींदों में खोना है मुझे, मैं लहू अपनी अनाओं का बहा सकता नहीं, तुम नहीं आती जो मिलने मैं भी आ सकता नहीं। उसको ये कह के वसी मैंने रिसीवर रख दिया, और फिर अपनी अना के पाँव पे सर रख दिया। बताइएगा नज़्म आपको कैसी लगी।

और समीन अभी आप पसंद सुन रहे थे तरन की, बेहद शुक्रिया तरन आपका। और समीन अगर आज के इस प्रोग्राम में कोई गीत सुनना चाहें तो आप भी हमें बता सकते हैं, आपकी फरमाइश को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के हमें दिली खुशी होगी। वसी शाह लिखते हैं कि किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, मंडेरों से चरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता, किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, मंडेरों से चरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता। और हमारी सोच की परवाज को रोके नहीं कोई, हमारी सोच की परवाज को रोके नहीं कोई, नए अफलाक पे पैरे बिठाकर कुछ नहीं मिलता। और कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, हजारों ख्वाब आंखों में बसाकर कुछ नहीं मिलता। कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, हजारों ख्वाब आंखों में सजाकर कुछ नहीं मिलता। और सकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, सकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, जिन्हें अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता। सकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश जाकर भी, जिन्हें अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता। और उसे कहना के पलकों पे न टांके ख्वाब की झालर, उसे कहना के पलकों पर न टांके ख्वाब की झालर, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। और ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। और न जाने कौन से जज्बे की यूं तस्कीन करता हूँ, न जाने कौन से जज्बे की यूं तस्कीन करता हूँ, बज़ाहिर तो तुम्हारे खत जलाकर कुछ नहीं मिलता। और फकत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, फकत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, हर एक को दास्ताने दिल सुनाकर कुछ नहीं मिलता। फकत तुमसे ही करता हूँ मैं सारी राज की बातें, हर एक को दास्ताने दिल सुनाकर कुछ नहीं मिलता। और उसे मैं प्यार करता हूँ तो मुझको चैन आता है, वो कहता है उसे मुझको सताकर कुछ नहीं मिलता। और मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज आती है, किसी के हिजर में नींदें गवाकर कुछ नहीं मिलता। और जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, वसी बेफैज लोगों से निभाकर कुछ नहीं मिलता। बताइएगा वसी की ये गजल आप सुनने वालों को कैसी लगी। और अब आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आएगा।

और सामीन, ब्रेक के बाद और आपको एक खूबसूरत गीत हमने सुनाया, उसके बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, खूबसूरत गीत था, उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और अब शायर की एक खूबसूरत तख्लीक, महिंद्रा कपूर की आवाज है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।
2: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: चुकी है तो कहीं और जाने या परेशानी नहीं। हर किस्म की गाड़ियों के एमओटी का काबिल एतमाद सेंटर रीटेल AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07867862585।
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
3: 96.7 Link FM.
4: You are listening to Link FM.

0: और सामीन, अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ यही नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं। और यही नशात इस वक्त आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर भी सुन रहे हैं। अपने सुनने वाले वो चाहे हमें टिकटॉक के जरिए सुन रहे हों या रेडियो के जरिए सुन रहे हों, आप जहाँ कहीं भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से हम खुश आमदेद कहते हैं। और अब यूं करते हैं कि आपकी आवाज़ें पहुँचाते हैं सुनने वालों तक भी। तो सबसे पहले AMK आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए ताकि आपको हम सुनने वालों से आपकी मुलाकात करवाएं, आपकी बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। AMK क्या हाल है, आप खैरियत से ठीक है?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। वैसे तो आप

0: आप हमारे साथ खासी देर से मौजूद थे, लेकिन अब लाइव कॉल्स के सिलसिले में सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज सुनने वाले
1: जी, बहुत शुक्रिया जी। जी, ये कलाम है रियाज शाहिद साहब का, मैं
0: बस
1: पढ़ती हूँ।
0: जी जी जी इनायत कीजिए।
1: याद करता है कहाँ कोई मुसीबत के सिवा,
0: आहा,
1: याद करता है
0: कहाँ
1: कहाँ
0: कोई
1: कोई
0: मुसीबत
1: मुसीबत
0: के
1: के
0: सिवा,
1: सिवा, कोई रिश्ता नहीं दुनिया में जरूरत के सिवा।
0: क्या कहने क्या कहने, खूबसूरत है, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह,
1: याद करता है कहाँ कोई मुसीबत के
0: हाँ
1: सिवा,
0: हाँ
1: कोई रिश्ता नहीं दुनिया में जरूरत के सिवा।
0: कहते ना कि जरूरत मार देती है गरूरे बेनियाजी को, जरूरत मार देती है गरूरे बेनियाजी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता।
1: बात फिर से दरपेश है तन्हाई की सूरत यारों,
0: क्या कहने,
1: फिर से दरपेश है
0: तन्हाई
1: तन्हाई
0: की
1: की
0: सूरत
1: सूरत
0: यारो,
1: यारों, वक्त कटने लगा अब मेरा शिकायत के सिवा।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
1: बहस हो तकरार अबस हो गई कल शब जिस पर,
0: आहा,
1: बहस हो तकरार
0: अबस
1: अबस
0: हो
1: हो
0: गई
1: गई कल
0: कल शब
1: शब
0: जिस
1: जिस
0: पर,
1: पर, मसला था ही नहीं हुर्फ खिजालत के सिवा।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मुनकता रब्त मेरा उससे हुआ है क्योंकि,
0: आहा,
1: मुनकता रब्त मेरा उससे
0: उससे
1: हुआ
0: हुआ है
1: है
0: क्योंकि,
1: क्योंकि, बात करता ही नहीं कोई अजियत के सिवा।
0: क्या कहने क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। अच्छा है,
1: मुनकता रब्त मेरा उससे हुआ है क्योंकि,
0: आहा,
1: बात करता ही नहीं कोई।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: दोस्ती प्यार वफा रिश्ते सभी लफ्ज हुए,
0: आहा,
1: दोस्ती
0: प्यार
1: प्यार वफा रिश्ते
0: सभी
1: सभी
0: लफ्ज
1: लफ्ज
0: हुए,
1: हुए, वो मिला पर ना मिला दिल की कदूरत के सिवा।
0: क्या कहने। वाह वाह,
1: ये तयकुन था मुझे छोड़ के ना जाएगा,
0: ये
1: ये
0: तैकुन
1: तयकुन
0: था मुझे
1: था
0: छोड़ के
1: मुझे
0: जाएगा,
1: छोड़ के ना जाएगा, पर मुझे छोड़ गया अपनी सहूलत के सिवा।
0: क्या कहने, लाजवाब है लाजवाब है। वाह वाह,
1: जब्त मुमकिन ही नहीं जिसकी रविश में यारों,
0: आहा,
1: जब्त मुमकिन ही नहीं जिसकी रविश में यारों, क्या कहें उसकी खिरत क्या है जहालत के सिवा।
0: बहुत खूब। जो इससे पहले वाला शेर था वो सुनते हुए एक शेर जहन में याद आ गया था
1: जी
0: इसी
1: जी
0: हवाले से, कि चल दिए तुम भी हमें छोड़ तन्हा आखिर, चल दिए तुम भी हमें छोड़ के तन्हा आखिर, साथ चलते तो नई रस्म के बानी होते।
1: वाह जी।
0: जी,
1: फासले पाटने का काम उसे आता नहीं,
0: आहा,
1: फासले पाटने का
0: काम
1: काम
0: उसे
1: उसे
0: आता
1: आता
0: नहीं,
1: नहीं, उसमें हर बात की बहुतात मोहब्बत के सिवा।
0: बहुत अच्छे। कहते ना कि नफरत हो मोहब्बत हो कोई गम हो के खुशी हो, नफरत हो मोहब्बत हो कोई गम के खुशी हो, हम कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं रखते, और रखते तो हैं हम और भी कुछ काम जरूरी, लेकिन तेरी चाहत से ज्यादा नहीं रखते।
1: वाह जी, बहुत कमाल। रफ्तगां दे गए मंजिल की खबर यूं शाहिद,
0: आहा,
1: रफ्तगां दे गए मंजिल की
0: की खबर
1: खबर
0: यूं
1: यूं
0: शायद,
1: शाहिद, नाम पैदा नहीं होता है रियाजत के सिवा।
0: बहुत खूब बहुत
1: याद
0: खूब,
1: करता है कहाँ कोई मुसीबत
0: मुसीबत
1: के
0: के सिवा,
1: सिवा, कोई रिश्ता नहीं दुनिया में जरूरत के सिवा।
0: बहुत अच्छे।
1: बहुत शुक्रिया
0: कहते
1: जी,
0: हैं ना कि
1: आपका बहुत सुंदर
0: वादा
1: सुना।
0: वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, खैरात भी सखी से न मिलती फकीर को।
1: बहुत खूब जी,
0: जी जी
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी जी यूं करते हैं कि हम एक एक गजल सभी से सुनते जाते हैं और फिर सेकंड राउंड लगा लेंगे। अब सीक्रेट आप अनम्यूट कीजिए अपनी माइक, आपसे बात कर लेते हैं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं आप,
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए अब ठीक है।
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। जी
1: बहुत
0: इनायत कीजिए, आज
1: शुक्रिया
0: क्या सुनाएंगे सुनने वालों के लिए।
1: जी। जरूर, मेरे पास नसीरुद्दीन नसीरी शाह साहब की एक खूबसूरत गजल।
0: बहुत कादरुल कलाम शायर, शायरी आफ्त जुबान उन्हें कहा जाता है ना, सात जुबानों पे उन्हें दस्तरस थी लिखने की। जी जी
1: जी कोशिश
0: जी
1: कोशिश मांगते हैं आपकी जी। लिखते हैं कि मेरी जिंदगी तो फिराक है वो अजल से दिल, तो फिराक है वो
0: अजल
1: अजल
0: में
1: से दिल में मकी
0: मकी
1: से
0: सही,
1: ही, वो निगाहें शोक से लगे जान से लाख करी सही।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहें,
1: बहुत शुक्रिया। और हमें जान देनी है एक दिन,
0: हमें जान देनी है एक दिन,
1: वो किसी तरह हो कहीं सही,
0: बहुत खूब,
1: हमें जान देनी है एक दिन किसी तरह हो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो

0: सही,
1: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने,
0: बहुत शुक्रिया।
1: जिस दज से कहते हैं, फैज कहते हैं ना कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और मोहसिन नकवी का भी खूबसूरत शेर था ना कि ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके।
0: और शाह साहब लिखते हैं कि सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है।
1: बहुत खूब,
0: सिरे तूर हो सिरे हश्र हो, हमें इंतजार
1: कबूल
0: है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही
1: वो कहीं सही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फिर से पढ़िएगा, खूबसूरत है। वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। सिरे तूर हो सिरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही।
1: क्या कहने, खूबसूरत है।
0: और नाखून पे मेरा जो बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं।
1: आहा,
0: नाखून पे मेरा जो बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही,
1: तो नहीं सही। खूब है, वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। और मुझे बैठने की जगह मिले,
1: मुझे बैठने की जगह मिले,
0: मुझे बैठने की जगह मिले, मेरे आरजू मेरी आरजू का भरम रहे।
1: वाह वाह,
0: मुझे बैठने की जगह मिले, मेरी आरजू का भरम रहे, तेरी अंजुमन में अगर नहीं, तेरी अंजुमन से करी सही।
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। और तेरा दर तो हमको न मिल सका, तेरी राह गुजर की जमी सही। तेरा दर तो हमको न मिल सका, तेरी राह गुजर की जमी सही, हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहां से।
1: कहते हैं ना कि एक ही दर हो तो सजदों का फिर आता है मजा, एक ही दर हो तो सजदों का फिर आता है मजा, वो भटक जाते हैं कई जिनके खुदा होते हैं।
0: क्या कहने,
1: और
0: मेरी जिंदगी का नसीब
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: नहीं दूर मुझसे करीब है।
1: आहा,
0: मेरी जिंदगी का नसीब है नहीं दूर मुझसे
1: करीब है,
0: करीब है, मुझे उसका गम तो नसीब है, वो अगर नहीं तो नहीं सही।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: और खूबसूरत शेर के जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर ना उठाइए।
1: बहुत खूब,
0: जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हश्र पर ना उठाइए, जो करेंगे आप सितम वहां, वो अभी सही वो
1: यही सही। बहुत खूब, कहते हैं ना कि बड़ा मजा हो कि मैशर में हम करें शिकवा, बड़ा मजा हो कि मैशर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए।
0: क्या कहने। और मक्ता सुनिए कि वो उसे देखने की जो लो लगी, तो नसीर देख ही लेंगे हम।
1: आहा,
0: उसे देखने की जो लो लगी, तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशीं
1: सही, सही। बहुत खूब बहुत,
0: वो हजार पर्दा नशीं सही।
1: मुझे इब्ने इंशा का इस गजल आपकी सुनते हुए वो शेर बार बार ज़हन में आ रहा था कि दिल गम से बहुत बोझल है, दिल गम से बहुत बोझल है, अब आन मिलो तो बेहतर है, दिल गम से बहुत बोझल है, अब आन मिलो तो बेहतर है, इस बात से हमको क्या मतलब, ये क्यों कर हो, ये कैसे हो,
0: ये कैसे हो।
1: जी
0: जी जी,
1: सही सही। कोई एक गजल और भी सुना दीजिए अगर कुछ है सिलसिला।
0: चले,
1: या फिर यूं करते हैं कि अभी हम वो जो सिलसिला रखा हुआ है उसके जरिए एम से भी सुन लिया और आपसे भी, अब चलते हैं सकूत, आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए।
0: नेक्स्ट टर्म में फिर इसी तरह
1: जी, आप लाइन पे ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए, ठीक है। सकूत, आप अपनी माइक आप खोलिए
2: जी,
1: एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपसे बात होती है।

0: और सामीन अब लाइन पे हमारे साथ जनाब शकील साहब तशरीफ फरमा है, इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शकील साहब। जी शकील साहब, आपको हमारी आवाज सही आ रही है? जी जी, खुश आमदेद कहते हैं आपको आज के रंगे महफिल में। जी वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम।
1: उनकी गजल है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: फिक्र कर उकबा की इज्जत का अगर अरमान है।
0: वाह वाह।
1: फिक्र कर उकबा की इज्जत का अगर अरमान है, चार दिन दुनिया फानी का बशर मेहमान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। खैर और शर का जायजा लेता रहा जो हर नफ्स, चश्मे हक आगा में है बेशक वही इंसान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: आए है दुनिया में काम अच्छे करने के लिए। आए हैं दुनिया में काम अच्छे करने के लिए, वरना समझो जिंदगी गुमनाम है, बेजान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जिनको रुस्वा कर रहा है खुद परस्ती का नशा, उनसे उम्मीद वफा जो रखे वो नादान है।
0: बहुत खूब।
1: मौज गम से सिर्फ टकराना नहीं कोई कमाल, पुरसकून माहौल भी है दोस्त तूफान है।
0: बहुत खूब शकील साहब बहुत।
1: जिसने कल अपनी मोहब्बत से किया था आशना,
0: वाह वाह।
1: जिसने कल अपनी मोहब्बत से किया था आशना, वादा ए मेरो वफा से आज वो अनजान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जाने वाले अपनी यादें दे गए हमें,
0: वाह वाह।
1: मेरी तनहा जिंदगी पर उनका ये
0: एहसान है। बहुत खूब।
1: तो एक और सुना दो अगर।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: असलम गुरदासपुरी।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: अपनी सूरत का ही दीदार दोबारा कर लें, डूबते चांद का हम फिर से नजारा कर लें।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए।
0: बहुत ही खूबसूरत शेर है, वाह वाह। जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए,
1: गनीमत तो नहीं जिसके लिए, है देखम जर्फ की
0: हर बात गवारा कर लें। बहुत खूब बहुत खूब।
1: शेख जिस ऐद की देता है मिसाले हमको, कैसे उस ऐद को हम जिंदा दोबारा
0: कर लें। बहुत खूब।
1: आसमानों पे तो इंसान नहीं रह सकते,
0: आसमानों पे तो इंसान नहीं रह सकते,
1: जैसे मुमकिन हो जमीन पर ही
0: गुजारा कर लें। बहुत खूब बहुत खूब।
1: अब तो बीमारे मोहब्बत की है हालत नाजुक, चारा साजों से कहो कोई चारा
0: कर लें। बहुत खूब।
1: जिसके ईमान में ही इंसान, जिसके ईमान में ही इंसान से हो नफरत शामिल, किस तरह ऐसे सितमगर से गुजारा कर।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
1: अब तो इस शहर में ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे दिल कर ही कभी, जिसे मिलकर ही कभी जिक्र तुम्हारा
0: कर लें। बहुत खूब बहुत खूब।
1: डूब जाते हैं घड़ी पल में सितारे, असलम। डूब जाते हैं घड़ी पल में सितारे असलम, किस तवक्को पे उसे आंख का तारा कर लें।
0: क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब। और इस गजल का सबसे खूबसूरत वही शेर था कि जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं कि जिसके लिए ऐद कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और जी सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब शकील साहब, हमारे बहुत ही रेगुलर और मोहतरम कालर, बरले से तशरीफ़ लाते हैं, हमेशा खूबसूरत शायरी सुनाते हैं, और नवाब साहब खुश आमदेद कहते हैं, आपको सुना देते हैं कोई अच्छी सी गज़ल, कोई नज़म आप के नाम करते हैं। चलिए आपको चंद अशआर सुना देता हूँ अमजद, इस्लाम अमजद के। लिखते हैं कि करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे के दुनिया, बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज़ होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है अगर इस सांस पे बैठे के दुनिया, बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। जिसे तुम वक्त कहते हो, जिसे तुम वक्त कहते हो, धुंधलका सा कोई जैसे जमीन से आसमां तक है, ये कोई ख्वाब है जैसे, नहीं मालूम कि इस ख्वाब की मोहलत कहाँ तक है। करो जो बात करनी है। बताइएगा नवाब साहब, आपको नज़म पसंद आई अमजद इस्लाम अमजद की? और अब जो हमारे साथ सकूत, आप अपनी माइक के खोल लीजिए, आप उससे कुछ सुनते हैं जी। आप अपनी माइक खोल लीजिए जी। जी बहुत खूब बहुत खूब।
1: मुझे ऐसा लुत्फ अता किया कि जो हिजर था ना विसाल था, मेरे मौसमों के मिजाज का तुझे मेरा कितना
0: ख्याल था। बहुत खूब
1: शुक्रिया। किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई।
0: हाँ हाँ, किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई।
1: तेरा नाम लेके मिला उससे, मेरे हाफसे का ये हाल।
0: क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है लाजवाब है।
1: और कभी मौसमों के शराब में, कभी बामो दर के अजाब में। कभी मौसमों के शराब में, कभी बामो दर के अजाब में, वहां उम्र हमने गुजार दी जहां सांस लेना मुहाल था।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: बहुत शुक्रिया। और कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग कैसे उजड़ गए।
0: वाह,
1: कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग
0: कैसे उजड़ गए।
1: कोई मीर जैसा गिरफ्तार दिल तेरे सामने की मिसाल था।
0: बहुत हो बहुत हो
1: बहुत शुक्रिया। और तेरे बाद कोई नहीं मिला जो ये हाल देख के पूछता।
0: आहा,
1: तेरे बाद कोई नहीं मिला जो ये
0: हाल देख के पूछता।
1: मुझे किसकी आग जला गई, मेरे दिल को किसका मलाल था।
0: बहुत हो बहुत हो
1: बहुत शुक्रिया। और शेर आखिर के, कहीं खूने दिल से लिखा तो था तेरे साले हिजर का सानेहा।
0: बहुत खूब।
1: कहीं खूने दिल से लिखा तो था तेरे साले हिजर का सानेहा,
0: सानेहा।
1: वो अधूरी डायरी खो गई, अब न जाने कौन सा साल था।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत उम्दा।
1: बहुत शुक्रिया आप सबकी खूबसूरत सलाम का।
0: बहुत शुक्रिया। और जो के सफर, अब आप अपनी माइक ओपन कर लीजिए, आपसे सुनते हैं और इसके बाद ब्रेक पे हम जाएंगे, और ब्रेक के बाद तकरीबन 5-7 मिनट के बाद हम आएंगे। जो के सफर, आप अपनी माइक खोल लीजिए
2: जी। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? खैरियत से ठीक हैं जोक?
2: अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी महफिल सजी हुई है।
0: बहुत शुक्रिया बहुत नवाज।
2: दिल खिंचे चला आता है और याद रहता है कि वेंसडे को आपकी महफिल होती है और
0: सैटरडे को भी। जी जी, एवरी वेंसडे और एवरी सैटरडे यूके टाइम 8 से 10। जी
2: जी। तो वैसे मैं बर्मिंगम से हूँ और हमारा बर्मिंगम का चैनल रेडियो एक्सेल, उस पर मैं रेगुलर आती हूँ एवरी सैटरडे।
0: जी जी
2: जी। तो एक गजल लेकर आई हूँ आपकी महफिल में।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
2: कुछ इस तरह से है कि आज जाते जाते फिर उसने सर शाम लौट आने का वादा किया है।
0: वाह वाह
2: शुक्रिया। ना नमी होगी उसकी आंखों में, आज फिर उसने हर गम बुलाने का
0: वादा किया है। बहुत
2: शुक्रिया। उदास रात में भी
0: बहुत शुक्रिया
2: रुत पुर फिजा होगी।
0: वाह वाह।
2: आज उसने फिर से मुस्कुराने का वादा किया है।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
2: शुक्रिया। जिसकी याद में नींदे उचाट थी, आज उसने फिर अपनी बाहों में सुलाने का वादा किया है।
0: बहुत खूब बहुत खूब
2: शुक्रिया। जिसके लम्स से ये रूह प्यासी थी, आज मुझ में समा कर फिर से उसने तिश्नगी मिटाने का वादा किया है।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
2: शुक्रिया। शम्मा की तरह जल जाती उसके इंतजार में, आज उसने फिर परवाने की तरह जल जाने का वादा किया है।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
2: शुक्रिया। رازداں بنا کر مجھے اپنی ذات کا، آج اس نے ہر راز بتانے کا وعدہ کیا ہے۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے۔
2: اور آخر میں مکتا ہے کہ جس کے چلے جانے پر پھر سائرہ روٹ جائے گی، جس کے چلے جانے پر پھر سائرہ روٹ چلے جائے گی، آج اس کے آنے پر پھر سے اس نے بنانے کا وعدہ کیا ہے۔
0: بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ آپ کا، ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنی مائک اب میوٹ کر لیجئے اور واپس چلتے ہیں اے ایم کے، بلکہ یوں ہے کہ اب ہماری بریک بالکل آ گئی ہے، تو اے ایم کے آپ سے بات ہوگی، اور عبد الکریم علی صاحب آپ بھی آ چکے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور انویٹیشن بھیجیے، آپ کو بھی جوائن کر لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کی کال بھی ہم لیں گے۔ سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر بریڈ فورڈ سے، اور یہی نشریات آپ بریڈ فورڈ کے ڈب ریڈیو پہ بھی سنتے ہیں، بی ایف ڈی ایشین ریڈیو کے نام سے آپ ہمیں وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل ساؤنڈ میں آپ ہماری یہ نشریات وہاں بھی سن سکتے ہیں، آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk، bradfordasianradio.co.uk ہماری ویب سائٹ ہے، اور اس وقت کی یہ نشریات آپ لنک ایف ایم شیفیلڈ سے بھی سن رہے ہیں 96.7 FM پر۔ نواب، بے حد شکریہ آپ کے عزت افزائی کے لیے، بہت نوازش، سلامت رہیں، خوش رہیں، اور اب یوں ہے کہ ہم چلیں گے بریک پہ، اور بریک کے بعد آپ ہمیں ٹک ٹاک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ضیاء شاہ، خوش آمدید آپ کو بھی کہتے ہیں۔ آپ ہماری یہ لائیو نہ صرف خود پسند کیجئے، اسے ڈبل ٹیپ کیجئے، بلکہ آپ اسے ری پوسٹ بھی کیجئے، لائیو شیئر بھی کیجئے، تاکہ ہماری یہ نشریات دیگر دوستوں تک بھی پہنچ سکیں، اور یوں کریں گے کہ اب ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے، اور بریک کے بعد جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں ٹک ٹاک پہ ہمارے ساتھ۔
3: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the guard today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
4: Nayab's Takeaway in Sheffield
5: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
4: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
5: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
4: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
6: جی ہوئے گی ایکسیڈنٹ، فکر نہ کرو، فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو۔ اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو، تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو، یا پھر کوئی کرائنی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے، تے دا کلیم ٹیم تسانی خدمت وچ حاضر ہے۔ جڑے شفیلڈ، دادرم تے گرد و نواح علاقے وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے، دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفیرل فیس بھی دینے نے۔ انہاں دا فون نمبر ہے 0330057100009، یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ، رودرم۔
7: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
8: And the winner is...
9: And the winner is...
10: And the winner is...
8: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
12: Tu sab

और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदेद। इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ डेप पे भी आप हमें ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सुनते हैं, मुजाफात में सुनते हैं। और यही नशात आप इस वक्त लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पे भी सुन रहे हैं। और अभी आपके लिए एक गीत क्यों कर रहा था, तो उस गीत से मुझे उस गीत की थोड़ी सी पैरोडी याद आ गई। आपने एक दौर में एक गीत सुना होगा शायद बचपन में कहीं, कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। फिल्म का नाम है गालिबन लैला मजनू। तो हमारे एक शायर हैं सरफराज शाहिद पिंडी इस्लामाबाद के, बड़े अच्छे शायर थे, तो उन्होंने इसकी क्या ही खूबसूरत तजमीन की, इसकी पैरोडी बनाई कि हेरोइन बेचने वाले से कहा लैला ने, ये जो पाउडर है सुंघा दो मेरे दीवाने को। हेरोइन बेचने वाले से कहा लैला ने, ये जो पाउडर है सुंघा दो मेरे दीवाने को, ताकि मर जाए किसी रोज नशे के हाथों, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अब साथ साथ उस गीत के थोड़े से बोल सुनाते हैं, और फिर जो भी हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें भी लाइव लेके हम चलेंगे।

0: जी कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, क्या ही खूबसूरत गीत था। और इससे पहले आपको एक खूबसूरत जोक भी इसी गीत से मुतालिक सुनाया था, उम्मीद करते हैं कि जोक भी आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और आवारा गर्दे शहर को पत्थर न मारना, आवारा गर्दे शहर को पत्थर न मारना, आदाब आशना न सही, आदमी तो है। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जी, आप अपनी माइक खोलिए और बोलिए जी हमारे मेहमान
1: जी, सलाम वालेकुम।
0: जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम इफ्ती खान जी।
0: ए इफ्ती खान, इफ्ती खान वेलकम जी एन
1: हाँ जी,
0: जी। आज क्या सुनाएंगे आप?
1: आज एक दास्तान है, थोड़ी सी बात हुई है किसी के साथ, तो उस पे एक छोटा सा शेर है,
0: जी जी जी
1: किसी को मैं शेर
0: जी जी जरूर जरूर,
1: अगले मुजाहरे में आपसे फिर उसका जवाब भी दे।
0: ठीक है ठीक है।
1: तो शेर ऐसे है कि किसी ने अपनी तारीफ में पूछा तो हमने उसको ये बोला कि पत्ती पत्ती,
0: हाँ
1: क्वेश्चन उसका ये था कि पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती,
0: हाँ हर कली मैं बेखाब हो जाती हूँ,
1: पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली
0: मैं
1: में
0: बेखाब हो
1: बेखाब हो
0: जाती,
1: जाती,
0: तुमने डाली ना। आहा,
1: तुमने डाली ना होती मैं फिजा नजरें,
0: वरना
1: वरना
0: शबनम
1: शबनम
0: शराब।
1: शराब हो जाती।
0: और इसी के हवाले से एक शेर मुझे याद आ गया ना, कि तुम्हारी बेमुरवती ने लाज रख ली बादा खाने की, तुम्हारी
1: हाय हाय,
0: बेमुरवती ने लाज रख ली बादा खाने की, तुम आंखों से पिला देते तो मैं खाने कहां जाते।
1: हाय हाय हाय
0: जी जी
1: हाय, बहुत अच्छा था। उसका जवाब ये है जी,
0: जी जी
1: जवाब मेरे वाले शहर का ये था
0: जी
1: जी, वो
0: जी
1: फिर आगे बोलता है बंदा कि
0: जी जी
1: पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी,
0: आहा
1: पत्ती पत्ती
0: गुलाब
1: गुलाब क्या
0: क्या होगी,
1: होगी, हर कली में
0: मैं
1: बेखाब
0: बेखाब
1: क्या
0: क्या
1: होगी,
0: होगी।
1: तुमने ना डाली होती महफेरा नजरें, वरना शबनम शराब क्या होगी।
0: आहा, क्या कहने क्या कहने। जी जी जी जी बहुत शुक्रिया आपका, हम अदा करते हैं। और अब माइक हम खोलते हैं और जो हमारे साथ एम के, आप दोबारा कुछ सुनाइए
2: जी
0: जी। जी आप सुनाइए
2: जी मैं गजल पढ़ती हूँ।
0: जी जी सुनाइए।
2: दश्त में पैस नहीं को बे फरहाद नहीं,
0: क्या कहने, वाह
2: दश्त
0: वाह।
2: में पैस नहीं को बे फरहाद नहीं, है वही इश्क की दुनिया मगर
0: मगर
2: आबाद
0: आबाद
2: नहीं,
0: नहीं, बहुत खूब बहुत खूब।
2: रस्म उल्फत में रवा शिकवाए बेदाद नहीं,
0: आहा,
2: रस्म उल्फत में रवा
0: शिकवाए
2: शिकवाए
0: बेदाद
2: बेदाद
0: नहीं,
2: नहीं, ये तो कमज़र्फ़ी है।

0: बात है फरियाद ने,
1: बहुत हूँ बहुत हूँ।
0: वो मेरी खाक नशीनी के मजे क्या जाने,
1: आहा
0: वो मेरी खाक
1: नशीनी
0: नशीनी
1: के
0: के
1: मजे
0: मजे
1: क्या
0: क्या
1: जाने,
0: जाने, जो मेरी तरह तेरी राह में बर्बाद
1: बर्बाद
0: नहीं,
1: नहीं। बहुत खूब। कहते
0: झूठ
1: ना कि
0: की तो
1: लिखी,
0: तुझे। हाँ
1: कहते ना
0: जी,
1: लिखी है वही दश्त नवर्दी नसीब में फिर से, लिखी है वही दश्त नवर्दी नसीब में फिर से, कोई उसी की तरह हू बहू पुकारता है।
0: वाह जी।
1: जी जी सुनाइए।
0: ढूंढने को तुझे वो मेरे ना मिलने वाले,
1: आहा
0: ढूंढने को तुझे वो मेरे ना मिलने वाले, वो चला है जिसे अपना भी पता याद
1: याद नहीं।
0: नहीं,
1: बहुत खूब।
0: एक जंजीरे तरीकत में बंधे हैं दोनों,
1: आहा
0: एक जंजीरे
1: तरीकत
0: तरीकत
1: में
0: में
1: बंधे हैं
0: बंधे
1: दोनों,
0: हैं दोनों, इश्क पाबंद सही हुस्न भी आजाद
1: आजाद
0: नहीं,
1: नहीं। बहुत खूब।
0: अर्श वाले न सुने सारी खुदाई सुन ले,
1: आहा
0: अर्श वाले न सुने सारी खुदाई सुन ले, इस कदर पस्त मजाके लबे फरियाद नहीं।
1: बहुत खूब बहुत खूब। कहते हैं ना कि लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, जाने किस अर्श पे रहता है खुदा शाम के बाद।
0: वाह जी, कमाल जी। रूहे बुलबुल ने खजा बन के उजाड़ा गुलशन,
1: हाँ, रूए बुलबुल ने
0: रूहे
1: खिजां
0: बुलबुल
1: बन के
0: ने खजा बन के
1: उजाड़ा
0: उजाड़ा गुलशन,
1: गुलशन,
0: फूल कहते रहे हम फूल हैं सयाद
1: सयाद
0: नहीं,
1: नहीं क्या कहने। और
0: हुसन से चूक हुई इसकी है तारीख गवाह,
1: बहुत खूब।
0: हुसन से चूक हुई
1: इसकी
0: इसकी
1: है
0: है
1: तारीख
0: तारीख
1: गवाह,
0: गवाह, इश्क से भूल हुई हो ये मुझे याद
1: याद
0: नहीं,
1: नहीं। बहुत खूब बहुत खूब।
0: बेरबते माँ पे मिजराबे फुगा रख दी थी,
1: आहा
0: बेरबते माँ पे मिजराबे फुगा
1: रख
0: रख
1: दी
0: दी
1: थी,
0: थी, मैंने एक नगमा सुनाया था तुम्हें याद
1: याद
0: नहीं,
1: नहीं। बहुत खूब।
0: कफसो बुलबुलो गुल सब है ये फानू से ख्याल,
1: आहा
0: कफसो बुलबुलो गुल सब है ये फानू से ख्याल, तेरी हस्ती से ज्यादा कोई सयाद नहीं,
1: सयाद नहीं। बहुत खूब।
0: खोल कामों से मोहब्बत वर के इश्क उलट,
1: आहा
0: खोल कामों से मोहब्बत वर
1: भर
0: के
1: के इश्क
0: इश्क
1: उलट।
0: उलट, हुस्न को माने यक लफ्ज़े वफा याद नहीं,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: लाओ एक सजदा करूं आलमे
1: आलम
0: बदमस्ती में,
1: आहा
0: लाओ एक सजदा करूं
1: आलमे
0: आलमे
1: बदमस्ती में
0: बदमस्ती में, लोग कहते हैं कि सागर को
1: को
0: खुदा
1: खुदा
0: याद
1: याद
0: नहीं,
1: नहीं। बहुत खूब बहुत
0: दश्त
1: खूब।
0: में कैस नहीं कोह पे फरहाद नहीं, है वही इश्क की दुनिया मगर आबाद नहीं।
1: आबाद नहीं।
0: बहुत शुक्रिया जी।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आप सीक्रेट, आप अपनी माइक ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपसे सुनते हैं।
0: जी
1: जी
0: जी जरूर, मेरे पास एक नज्म
1: जी जी इनायत कीजिए।
0: लिखा है शायर ने कि क्या लगा था, क्या लगा था कि खुद को मुझ में निचोड़ दोगे,
1: आहा
0: फिर हमसे पूछोगे गम हमारे जब दिल भरेगा तो छोड़
1: तो छोड़
0: दोगे।
1: दोगे। बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया। तो बताओ जाना, तो बताओ जाना यही लगा था, ये एक बेजरर सा जो एक लड़का आजजी का लबास ओढ़े गलीज लोगों में जी रहा है, बहा के आंसू इताबे इबरत बहुत तसल्ली से पी रहा है,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: बहुत ही चुप है तो चुप रहेगा,
1: आहा
0: बहुत ही चुप है तो
1: तो
0: चुप
1: चुप रहेगा।
0: रहेगा, कि रोशनी भी ये कह रही थी कि क्या अब अंधेरा ही गुप रहेगा।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया। तो ऐसी सोचे गुलाम दिल से निकाल फेंको, अगर अंधेरा यहाँ पे आए तो उस पे मेरी विशाल फेंको।
1: बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया। विशाल जाना, वो शाल जाना जो हमने सूरज से तेरी खातिर उधार ली थी, वो शाल जाना कि जिसमें हमने हिजां छुपा के तुम्हारी खातिर बहार
1: बाहर
0: ली
1: ली
0: थी।
1: थी। बहुत खूब।
0: शुक्रिया। अगर वो फिर भी ना पीछा छोड़े, अरे अगर वो फिर
1: फिर
0: भी
1: भी
0: ना
1: ना
0: पीछा
1: पीछा
0: छोड़े
1: छोड़े।
0: तो उसको कहना कि मुझको उसने ये कहा है कि रोशनी की ना फिक्र करना, किसी से मेरा ना जिक्र करना,
1: बहुत खूब
0: मैं अपने हिस्से के सारे जुगनू तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: मैं अपने हिस्से के सारे जुगनू तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, कब अंधेरे ने तुझको देखा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा।
1: क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर जमाना बदल चुका है,
1: मगर जमाना बदल चुका है।
0: मगर जमाना बदल चुका है, तमाम चीजें जो मुफ्त ली थी अब तुम उनका हिसाब लिखो।
1: बहुत अच्छे।
0: बहुत शुक्रिया कि मैंने लिखा था एक सफा, तुम उसके बदले किताब लिखो। लिखो कि कैसे शराब छोड़ी, लिखो कि कैसे जनाब छोड़ी,
1: बहुत खूब,
0: लिखो कि कैसे वो वादे तोड़े, लिखो कि कैसे यू अपने छोड़े।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: बहुत शुक्रिया। लिखो कि कैसे वो चला था, लिखो कि कैसे वो जला था,
1: वाह वाह,
0: लिखो कि कैसे वो चुप रहा था, लिखो अंधेरा भी गुप रहा था,
1: बहुत खूब।
0: मगर ये लिखने के वास्ते तो, मगर ये लिखने के वास्ते तो तुम्हें भी जलना पड़ेगा जाना।
1: क्या कहने,
0: अरे मगर ये लिखने के वास्ते तो तुम्हें भी जलना
1: पड़ेगा
0: पड़ेगा
1: जाना,
0: जाना, तुम्हें भी मेरी तरह अकेला जी के मरना पड़ेगा
1: पड़ेगा जाना।
0: जाना।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: मगर ये तुमसे कभी भी लेकिन ना हो सका है ना
1: ना
0: हो
1: हो सकेगा,
0: सकेगा,
1: बहुत खूब।
0: कि कोई भी अब सच का पीछा न कर रहा है न कर सकेगा, तो
1: बहुत खूब,
0: छोड़ो जाना सवाल सारे। अरे तो छोड़ो जाना सवाल सारे, फकत तुम अपना जवाब सुन लो, मेरा सारा अजाब सुन लो।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया। कि कौन हूं मैं, कि कौन हूं मैं, अगर तुम पूछोगे मेरा शजरा तो गजनवी का कौन हूं मैं, कभी जो लटका था सूली पर वो अनल हक का जुनून हूं मैं।
1: बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। कभी मैं सबका जवाब दे दूं, कभी सवाले बदून हूं मैं, कभी मैं चीहूं बड़क बड़क कर, कभी सरापा सुकून हूं मैं,
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: कभी मैं झेलूं जमाने भर को, कभी मैं झेलूं जमाने भर को, कभी शिकस्ता सतून हूं मैं, कभी मैं पढ़ लूं नमाजें सारी, कभी फराइज का हून हूं मैं।
1: क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया। और अगर सफाई नहीं ये काफी, अभी भी शक है कि कौन हूं मैं।
1: वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
0: अगर सफाई नहीं ये काफी, अभी भी शक है कि कौन
1: कौन
0: हूं
1: हूं
0: मैं,
1: मैं,
0: तो फारहा भी ये कह रही है, तो फारिया भी ये कह रही है कि नए जमाने का जौन हूं मैं।
1: क्या
0: सुन
1: कहने,
0: लिया ना कि कौन हूं मैं,
1: बहुत खूब।
0: जौन था वो जौन हूं मैं,
1: क्या कहने, क्या कहने। मुझे
0: जौन
1: वसी शाह
0: था
1: के
0: वो
1: चंद अशआर हैं, मैंने कहा हम
0: जौन
1: भी
0: हूं
1: इस
0: मैं। बहुत
1: प्रोग्राम में सुनने
0: शुक्रिया
1: वाली फरमाइश कर रहे हैं, तो हम भी
0: जी,
1: एक
0: शुक्रिया
1: गजल पेश करते हैं इसी में
0: जी,
1: कि
0: शुक्रिया
1: दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना, दुख दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना, और वो जब्त न कर पाएंगी आंखों के समंदर, वो जब्त न कर पाएंगी आंखों के समंदर, तुम राह गुजारों से मेरा जिक्र न करना, और फूलों के नशे मन में रहा हूं मैं सदा से, फूलों के नशे मन में रहा हूं मैं सदा से, देखो कभी खारों से मेरा जिक्र न करना, फूलों के नशे मन में रहा हूं मैं सदा से, देखो कभी खारों से मेरा जिक्र न करना, और शायद ये अंधेरे ही मुझे राह दिखा दें, शायद ये अंधेरे ही मुझे राह दिखा दें, अब चांद सितारों से मेरा जिक्र न करना, और वो मेरी कहानी को गलत रंग ना दे दें, वो मेरी कहानी को गलत रंग ना दे दें, अफसाना निगारों से मेरा जिक्र न करना, और शायद वो मेरे हाल पे बेसाख्ता रो दें, शायद वो मेरे हाल पे बेसाख्ता रो दें, इस बार बहारों से मेरा जिक्र न करना, शायद वो मेरे हाल पे बेसाख्ता रो दें, इस बार बहारों से मेरा जिक्र न करना, और ले जाएंगी गहराई में तुमको भी बहाकर, ले जाएंगी गहराई में तुमको भी बहाकर, दरिया के किनारों से मेरा जिक्र न करना, और वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताता, वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताता, तुम सिर्फ इशारों से मेरा जिक्र न करना। और अब माइक खोलते हैं, सकूत आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए, आपसे कुछ सुनते हैं, और गलबन अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं होगा। जी आप लाइन पे हैं हमारे साथ हैं सकूत, तो आप कुछ सुनाइए।
2: जी बहुत शुक्रिया।
1: जी जी
2: मैं अशफाक अहमद साइन साहब की एक गजल पेश करना
1: जी
2: चाहता
1: जी
2: हूँ
1: जी जी
2: और बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करूंगा साथ में, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए।
1: जी जी
2: वो कहते हैं कि वो मुझको दस्तयाब बड़ी देर तक रहा,
1: वो मुझको दस्तयाब बड़ी देर तक रहा,
2: वो मुझको दस्तयाब बड़ी देर तक रहा, मैं उसका इंतखाब बड़ी
1: बड़ी देर
2: देर
1: तक रहा, बहुत खूब।
2: देखा था उसने मुड़ के मुझे एक नजर, तो फिर
1: यूसुफ साहब बेहद शुक्रिया आपका।
2: आंखों में इस तरह
1: बड़ी देर तक रहा, बहुत खूब।
2: और खुशबू भी कैद हो गई लब्जों के जाल में।
1: आहा,
2: खुशबू भी कैद हो गई लब्जों के जाल में, खत में वो एक गुलाब
1: बड़ी देर तक रहा, बहुत खूब बहुत खूब।
2: चेहरे पे फैलने लगी ताबीर की थकन।
1: आहा,
2: पलकों पे एक ख्वाब
1: बड़ी देर तक रहा, बहुत खूब। पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे।
2: पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे। मैं आप वो जनाब
1: बड़ी देर तक रहा। प्यार जब हद से बड़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उनवा हो गए। बारिश की तरह मुझ पे बरसता रहा वो शख्स,
2: बनकर वो एक सहाब
1: बड़ी देर तक रहा, बहुत खूब।
2: और सर फिर वो कहते हैं कि फिर सुबह तक ही छत पे सितारे मुकीम थे।
1: आहा,
2: फिर सुबह तक ही छत पे
1: सितारे मुकीम थे।
2: खिड़की में महताब
1: बड़ी देर तक रहा, क्या कहें।
2: और कहते हैं कि उसके सवाल पर सभी अल्फाज मर गए।
1: आहा,
2: उसके सवाल पर सभी
1: अल्फाज मर गए।
2: अश्कों में फिर जवाब
1: बड़ी देर तक रहा।
2: और शेरे आखिर के गिन गिन के मुझ पे वो कितने एहसान कर गया।
1: आहा,
2: गिन गिन के मुझ पे कितने वो
1: एहसान कर गया।
2: औरों पे फिर हिसाब बड़ी देर तक रहा,
1: बहुत खूब।
2: वो मुझको दस्तयाब
1: बड़ी देर तक रहा। बहुत शुक्रिया। और आपकी इसी गजल से, आप अपनी माइक म्यूट कर लीजिएगा, इसी गजल से मुझे चंद अशार शकील अख्तर साहब के याद आ गए। बहुत ही अच्छा लिखते थे शकील अख्तर साहब, कि उसकी तरफ हयात बड़ी देर तक रही, उसकी तरफ हयात बड़ी देर तक रही, मुट्ठी में कायनात बड़ी देर तक रही, और वो सुन रही थी भीगती आंखों से मेरी बात, वो सुन रही थी भीगती आंखों से मेरी बात, मुट्ठी में कायनात बड़ी देर तक रही, उसकी तरफ हयात बड़ी देर तक रही। और सना आप देख लीजिए, अगर कोई हमारे साथ और सामे हैं तो हम उन्हें ले लेते हैं, नहीं तो फिर आखिरी कलाम और आखिरी गीत पेश करते हैं। यूसुफ साहब गालबन कोशिश कर रहे थे, तो अगर उन्हें लेती हैं तो आप उन्हें लाइव ले लीजिए यूसुफ साहब को।
3: जी अगर कोई आना नहीं चाह रहा तो मैं चंद।
1: जी जी, यूसुफ साहब बड़ी देर से पूछ रहे थे, तो अगर वो लाइन पे स्टिल हैं तो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट हैं, तो आपसे हम दो बार सुन चुके हैं, तो यूसुफ साहब अगर आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपसे दुआ सलाम कर लेते हैं। जी यूसुफ आप रिक्वेस्ट भेजिए, और निगाह हुसैन साहब आप भी रिक्वेस्ट भेजिए, आपसे भी चलिए दो अशआर सुन लेंगे हम, और क्योंकि हमारे पास मुख्तसर सा ही वक्त है, अब ज़्यादा वक्त है नहीं, ठीक है। और आप रिक्वेस्ट भेजिए तो हम एक्सेप्ट करके तो आपसे हम थोड़ा सा कलाम सुन लेंगे। आप खासी देर से हमें, आपकी रिक्वेस्ट अभी मिली नहीं है, आप दोबारा भेज दीजिए यूसुफ साहब अभी। जी हाँ सीक्रेट, बेहद शुक्रिया आप सभी अहबाब जो आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इस प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शी, इज्जत बख्शी, आप सभी का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। निगाह हुसैन साहब अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपसे भी थोड़ी सी दुआ सलाम कर लेंगे, और यूसुफ अगर आप दोबारा हमें रिक्वेस्ट भेजें तो हमारे पास मुख्तसर सा वक्त है जिसमें आपसे भी हम बात कर लेते हैं। सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं रंगे महफिल प्रोग्राम आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से 14:13 AM पर, और हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और अगर आप इस रेडियो के साथ ब्रेडफोर्ड या इसके मुजाफात में रहते हैं, कीतले, हैलीफैक्स, हडर्सफील्ड, लीड्स, तो आप इस रेडियो को एज ए प्रेजेंटर ज्वाइन भी कर सकते हैं। यूसुफ अगर आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो रिक्वेस्ट भेजिए, आपको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और आपसे भी कुछ सुन लेंगे एक आध शेर, ठीक है।

आप सारे हमारे लिए काबिल कदर हैं, प्लीज पिक। आपकी रिक्वेस्ट सना देखिए, इनकी रिक्वेस्ट हमें मौसूल हुई है यूसुफ साहब की, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। सना आप देख सकती हैं जी, आपकी रिक्वेस्ट हमें दिख नहीं रही है, अगर हमें अपीयर होगी तो हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे कुछ, आप खासी देर से कोशिश कर रहे थे। तो निगाह हुसैन साहब, आप भी अपनी रिक्वेस्ट, आपको इनविटेशन हमने सेंड कर दिया, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे यूसुफ। चलिए अब यूं करते हैं कि हमारे जो भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, एम के सीक्रेट, दूसरे जो हमारे साथी थे यहाँ पे, आप सभी का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज की रंगे महफिल में हमारा साथ निभाया, आपने कॉल्स की, आप टिकटॉक पे हमारे साथ लाइव रहे, आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और अब इसी के साथ ही आज का रंगे महफिल पहुँचता है अपने इख्तिताम पे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सभी को सेहत व सलामती दे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अगली महफिल तक आप सभी से इजाज़त चाहेंगे, फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

0: क्या आपको ये जी का कबूल है?
1: जी कबूल है,
2: जी कबूल है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।
1: अब कैसे जाया जाएगा मुझसे? मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा।

0: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.
1: कमाल है। उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
2: तो चांद को ही देखे ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: विनर इज योर बिजनेस बी हर्ड ऑन द रेडियो.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.